सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं होंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी होंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

जन्म मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहंदे ने बड़ा सुखैन तरीका है महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उन्हां दे चरणा ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लैणगे। कबीर जी ने भी आख्या

जमरौत दी जंग विच सिखां ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलुए दियां गल्लां होण लगियां। नलुए तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हड्डा, दिनों दिन काबल वालू वद्दिया देख, पठान सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाणा नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपां दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महा सिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचों निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पहुंचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़िया गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एओ टकरे।

0: सरदार हरि सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वद्दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरि सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउणा नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

पता नहीं किन्ना कु सियाण है, किन्ना कु सुगड़ है, कोई हिसाब ला सकता है, क्योंकि उसकी किरत का हिसाब नहीं लाया जाता। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार, तेरी दिती हुई दात की समझ नहीं आती, तेरी समझ कितों आ, तेरी दात का ही मुल नहीं पाया जाता, तेरा कौन मुल पावे, तेरी दात ही एडी सोहनी एडी खूबसूरत एडी जुगत ला ली है ते तू किन्ना सियाना होएगा। साहब कहते ने मत समझी ओ सियाना कोई होर भी है जिसने तेनू शरीर दिता, जिसने शरीर च मन पाया, जिसने तेनू वर्तन वास्ते धन दिता है, जिस दिया सारिया बख्शिशा भोगदा है ओदे नालों सियाणा होर तेनू कोई मिलेगा नहीं। ते कई बार तो इन्ना भी भुलेखा लग जाता है, तू ऐसा समझ लग पैना उन्हें कोई गलती की है मैं ठीक कर दिया, जो उन्हें बनाया शायद गलत बनाया मैं उन्हें ठीक कर देवा, जो उन्हें रचिया शायद गलत रचिया है मैं सुधार कर देवा, अपने आप में सियाणा समझ बैठा होवांगा। कोई सूरत नहीं, कोई तरीका नहीं कि तू अपने आप में सियाणा समझ सके। जिसने तन मन धन जिन प्रभ दिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान, एक शब्द च महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेता कराया, चेता ही कराने वाली गल है, पता सारा है भुल जाने साहबा ने पावन बाणी च सानू उन्हां चीजां की सारी निश्चिता नहीं आती, लेकिन मोटिया मोटिया जिन्हां बिना बंदे का नहीं सरदा उन्हां दा जिक्र महाराज ने किया। तो कहते ने तेनू ओदा चेता है, तेनू ओदा ख्याल है, जिसने तेनू इन्ना कुछ दिता है

एकदम ही जोदा त्यों संसार नू कारबार नू छड़ के एकदम तुरना पया। हजूर गुरु पंचम पातशाह।

एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेडण वास्ते जा रहे सन। रस्ते विच कलजुग मिलिया। राजे परीक्षित ने आख्या, तेरा मेरे राज विच कोई कम नहीं। ते कलजुग कहन लगा, महाराज हुण मेरा पहरा आउण वाला है। तुहाडे तेज प्रताप अगे मैं ठहर नहीं सकदा, पर मैनू स्थान जरूर दिओ। कहिंदे ने राजा ने आख्या कि तू या ते सोने विच वास कर जिथे धन दौलत होवे, जां फिर जिथे पाप कर्म होण उत्थे तेरा वास है। ऐनी कहण दी देर सी कलजुग कहिंदे ने अलोप हो गया। राजे दे मुकुट दे विच सोना लग्या सी, उहदे विच वस गया। ज्यों सिर ते आके बैठिया, मत बुद्धि भ्रिष्ट हो गई। तुरे जा रहे सन, रस्ते विच की वेख्या, एक ऋषि तप कर रहे ने। राजे ने सोचिया मैनू नमस्कार करेगा, पर जदों ऋषि ने ना नमस्कार कीती, क्योंकि ओह ते समाधि विच बैठे हुए सन, गुस्सा आ गया। कहण लगे, मेरे राज विच एक ए फकीर, मैनू इहने उठ के नमस्कार नहीं कीती, इहनू मैं इस गल दा मजा चखावांगा। कहिंदे ने एक मोया होया सप पिया सी, अपने धनुष नाल चुकिया ते ओह मोया होया सप उस ऋषि दी गल दे आले दुआले लपेट दिता, उसी गर्दन विच पा दिता कि जदों इहदियां अखां खुलण गियां डरेगा। वापस आ गया अपने राजमहल विच। उधर ऋषि दे पुत्तर नूं जदों इस गल दा पता लगा कि राजा ने तेरे प्यो नाल मजाक कीती है, आया उहने आके अपने प्यो दे गल विचों ओह सप लाया, नाल ही उहने श्राप दिता कि राजे नूं इतना माण अहंकार हो गया, अज तों सतवें दिन राजा सप दे डंगण नाल ही मरेगा, श्राप हो गया। इधर जदों राजमहल दे विच राजा आया, मुकुट ला के रखिया, एकदम बुद्धि फिर स्वच्छ निर्मल होई। पश्चाताप कीता कि ऐ राजन, तू ते अज बहुत ही घोर पाप कर बैठे हैं, पर हुण की बनदा है। अखीर ए भी गल पता लगी कि सप दे डंगण नाल तेरी मृत्यु होनी है। कहिंदे ने साधु दा बचन कदे खाली नहीं जांदा। इहने अपने राज पुरोहित सदे, बड़े बड़े ऋषि तपीश्वर सदे कि किवें इस मौत तों बचिया जाए, सप ना आवे। किसे ने कुछ दसिया, किसे ने कुछ दसिया, अखीर कुछ मंत्रियां दी सलाह होई कि सप नहीं आएगा, जे सप ना आया ते मौत नहीं हो सकती, पानी दे विच घर बनाया जावे, क्योंकि जहरीला नाग जिहड़ा है पानी दे विच नहीं जांदा, ते जे किधरे पानी चलिया भी जाए तां शीशे दे उत्ते सप नहीं तुर सकदा, इस करके शीशे दा एक महल बनाया जावे। राजा शीश महल दे विच बैठे, जदों उह समां लंघ जाएगा राजा बच जाएगा, इहदी मौत नहीं होवेगी। इसे तरह कीता गया, दरिया दे विच शीशे दा एक घर बनाया गया। राजा उहदे विच बैठिया अपना सिंघासन ला के। निर्धारित समय ते जदों उह समां पुज्जा, आ के चारे पासे पहरेदार लगा दिते, कोई भी परिंदा तक इत्थे ना आ सके। लेकिन की होया, रोज जिहड़ी मालण आउंदी सी फुल्लां दा हार लैके, गुलदस्ता लैके राजे नूं भेट करन वास्ते, उहनूं पता लगा ते इसे पासे आ गई। पहरेदारां ने सोचिया, इह स्वागत विच लियाई है, रोज ही लियाउंदी है फुल ते गुलदस्ते, उहनूं जाण दित्ता। इह मालण जदों राजे दे कदमां विच इहने जा के फुल्लां दा गुलदस्ता भेट कीता, गल विच पाया ओ फुल्लां दा हार, बड़ी बेहतरीन खुशबू इसनूं आई। फुल्लां दा जिहड़ा गुलदस्ता सी हथ विच लै लिया। इसने कहण लगा, मालण अज ते इहदे विच तूं बहुत ही खूबसूरत फुल गुंद के लियाई है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। ओ खुशबू नूं लैण वास्ते कहिंदे ने, ज्यों ही नक नाल इहने
ਗੁਲਦਸਤਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਿਛਕ ਨਾਗ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਡੰਗ ਉਸਨੇ, ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ

जे हुक्म आ गया उस पार ब्रह्म परमेश्वर दा, उसनु कोई मेट नहीं सकदा। तो शेख फरीद जी, असा माया मोह दे जंजाल विच फसे हुए मनुखां नू एक जीवन दी सच्ची गल दसदे ने कि ए जीवन नाशवंत है। जे कुछ सच्चा है तां वाहिगुरु दा परम पवित्र नाम है, और सच्चे अमल चंगे अमल कीते हुए ही दरगाह दे विच कम आउणगे। कहंदे ने फरीद जी,

अंदर क्रोध दी अगन पड़क रही है। इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इना नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे। पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा है उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नू एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा हृदय

प्राप्त हुई है, पूरे गुरु का मिलाप होया, उदी बख्शिश हुई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उन्हां दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, वो भज गए ने मेरे कोलों।

एक गल कह के समाप्ति करा। कहंदे ने परंगरेटा गुरु का बेटा, गुरु तेग बहादुर साहब जी दा आशीष एक कपड़े विच लपेट के जदों श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे है, गुरु कलगीधर पातशाह 9 साल दे छोटे जे बच्चे सारियां संगतां माता गुजरी जी जिन्ना 26 साल भोरे विच बैठ के गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा साथ दिता, ओ माता जदों वेख्या अपने सरताज दा आसीस खून नाल लथपथ होया होया, माता वेख के सहारण ना कर सकी, गंगा जमुना वह तुरिया। ओ मेरा मालिक वैराग रूप गुरु तेग बहादुर जिन्हां दियां अखां विचों कदी नीर बंद ही नहीं होया, इतना वैराग जिथे पढ़ो वैराग ही वैराग। मेरे पातशाह पुछदे ने रंगरेटे फिर की होया, कहन लगा जी तड़ पिया सी, औरंगजेब ने ऐलानिया किया सी कोई होवे गुरु का सिख जेड़ा तड़ चुक लवे। पातशाह पुछदे ने उत्थे कोई सिख नहीं सी, 250 साल सिखी दा प्रचार हुंदिया उत्थे कोई सिख नहीं सी। पातशाह सिख ते है सन पर डरदे सी, फिर पहचान भी कोई नहीं सी, कौन खड़ा है। पातशाह ने आख्या खड़े सन, हां खड़े सन, पर छाती ते हाथ तरके कोई नहीं सी कहंदा मैं गुरु का सिख हां। उथे गुरु कलगीधर जी ने आख्या फिर मैं ऐसा सिंह सजावांगा, ओ तां दुहाई पा के आखेगा मैं सिख नहीं पर लोका ने आखना तू सिख है। तेरी दस्तार दसदी पई है तू सिख है, तेरा कड़ा दस रहा है तू सिख है, भावे ओ दुनिया नू धोखे विच रखण लई कह देवे मैं सिख नहीं पर लोका ने आखड़ा तेरा दाड़ा तेरे केस तेरी दस्तार तेरी कृपान दसदी पई है तू सिख है। मैं ऐसा सिंह सजावांगा जेड़ा छुप नहीं सकेगा। उथे पातशाह ने यह ऐलान किया और फिर तुहाडा रूप दिता ए गुरु के सिखां दा, जो प्रगट भया खालसा पर देण गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी। कितनी प्यारी बाणी मेरे पातशाह ने उच्चारण कीती है,

अंदर कौतक वरता रहे। द्यौड़ी च भाई प्राणा जी बैठे दर्शन करन नू चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखिया, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नू सिखां नू फड़िया, जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहब कहंदे ने वापर रहियां ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, भाई गुरदास जी भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहे हैं। तेरे कोलों नहीं सहा, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा पातशाह, मैनू तुसी आग्या दे, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे, भाई पराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कितों पै गया, तू फना करन दीआं ताकतां कितों आ गईआं तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहब हस के कहिंदे ने, भाई पराणा जे मेरे चरणा चों तबाह करन दीआं ताकतां तेरे कोल आईआं ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख दी रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, ओदी रजा विच रहो। साहिब उठे अपने आसन तों, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिंदा, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढे ते रखिया। ओह जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पहरुए, उन्हां ने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती, सहनशीलता सदका फिर भाई पराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है। वाहिगुरु

तारीफ करते ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरशा ने गुरु महाराज ने भी धरती नू माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

घोड़े ते सवार होके जालमां दी मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नूं नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिहड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाणे दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दित्ता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर हमला बोल दिता है।

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुलमी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओह सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहिंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहिंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओह ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे ने।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नूं खालसा जी दे 300 साल जन्म दिवस की लख लख वधाई होवे। सतसंगियो आस है कि इन्हां दी ये सेवा आप कबूलोगे कि अगों वास्ते अरदास करोगे, महाराज बख्शिश करो। ऐसे ही तरह आप संगतां दी ये सेवा करदे रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसटां, इतिहास दियां कैसटां घर घर विच पहुँचांदे रहन।